घोड़े पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, लौंडे आगे कहे टेकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं चल निकले कहीं।

इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख हाथ पकड़ हर गल न लगा जो कहती है करके दिखा सुनने में आया है तू मरती है दम पे मर के दिखा रहने दे मुंह बंद रख आंखें जो कहती हैं कहने दे बहुत रुकी है आज तो पानी बन के खुद को बहने दे शुभ बादशाह।

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति, पर्यटन और विकास का लागू जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।